0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा साहब ना पल इलाज तरला सकवले शे
3: औ द नूरु मालूमात दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
2: 0319 55 23 404

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशरिया, हमारे साथ रहे।

الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tank. जनाब सुपहर की चार बज चुके हैं और चार बजते ही जनाब आपको ये आवाज सुनाई देती है तीनों स्टेशन से एक साथ बराह रास्त। मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान और ये है केसन नशर पाकिस्तान का केसन केसन टी टाइम शो। जनाब तमाम सुनने वाले गर्ल्स एंड बॉयज अंकल अंकल एंड आंटीज चाचा एंड चाचीज माम एंड मामीज दादा एंड दादीज नाने नानी ऑफकोर्स सभी सुनने वालों को जनाब ढेर सारा सलाम ढेर सारा वेलकम इन केसन टी टाइम। जनाब उम्मीद यही करता हूँ कि जनाब बिल्कुल जी खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे, बिल्कुल जी सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ और जनाब दिन भर की थकान को थकावट को बिल्कुल जी खत्म कर चुके होंगे चाय के एक कप के साथ। और चाय के कप के साथ ही जनाब हमारे इस प्रोग्राम को जिसका नाम है केसन टी टाइम इसे आप इंजॉय करने लगे हैं अब से लेकर ठीक 5 बजे तक, यानी पूरा एक घंटा जनाब मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ढेर सारी बातें करनी है मैंने आप लोगों के साथ और ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों ने मेरे साथ। लेकिन जनाब बातों का तबादला पूरा एक घंटा जारी रहेगा और मीडियम क्या होगा जी जनाब, मीडियम होगा आपका आपके आपके इलाके का अपना FM, यानी कि अगर टांग में मौजूद है तो मुझे सुन रहे होंगे आप रेडियो अमन 88.4 के ऊपर, या फिर अगर पहाड़पुर में मौजूद है तो मुझे सुन रहे हैं आप रेडियो पैगाम 97.4। और ये साथ अगर आप मेरे प्यारे शहर मेरे अपने प्यारे शहर जनाब डेर इस्माइल खान में मौजूद है तो आप सुन रहे होंगे मुझे ग्लोबल FM 91 की लाइव फ्रिक्वेंसी पर।

0: कर रहे हैं आप लोगों को ढेर सारे प्रोडक्ट, आज की कल की एक हफ्ते की एक साल की 6 महीने की 2 साल की कंपनी नहीं है, बहुत सारे लोगों का लाखों लोगों का एतमाद है इस कंपनी पर।
1: फिर बुला मुझको मदीने,
0: जनाब लाखों लोगों के एतमाद के साथ, लाखों रिव्यूज के साथ और लाखों रिपीटेड कस्टमर्स के साथ ये कंपनी बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ रही है। और जनाब डेयर इस्माइल खान से इस कहानी इस कंपनी का सफर स्टार्ट हुआ था और अभी इसकी जर्नी जो है जारी है, आगे से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन आएगा कि इसी स्टेशन से हम पूरे पाकिस्तान को केसन की आवाज, खूबसूरती की आवाज, शिफा की आवाज, सेहत की आवाज पहुंचा रहे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।

0: जी बिल्कुल, इंसान को दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन चीजें उठा कर दे दें, खूबसूरत तरीन 10 चीजें इस दुनिया की, उसमें औरत को भी शामिल कर लें, उसमें कोठी मकान को भी शामिल कर लें, उसके अंदर गाड़ी को भी शामिल कर लें, उसमें आसाइशों को शामिल कर लें, उसमें खाने पीने को शामिल कर लें, दुनिया की 10 बेहतरीन चीजें आप इंसान के सामने रख दें तो अगले दिन फिर वो उदास होगा, क्योंकि उसको 11वीं चीज भी चाहिए।
1: मैं हजारों ही यूं तो दुनिया में हजारों।
0: तो जनाब, आप लाइफ के जिस भी मकाम के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो जी कुछ और मेहनत कर लूं, मैं अपनी प्यास बुझा लूं, तो याद

रखिएगा ये वाली जो प्यास है आपकी, मोर डू मोर की, डू मोर की जो बिल्कुल जनाब जो प्यास है ये कभी नहीं बुझने वाली है। तो हमेशा सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारिए, क्योंकि ये जो सफर है ये रुकने वाला नहीं है, और आपकी चाहतें आपकी ख्वाहिशें हर रोज बदलने वाली हैं, और ये उदासी का सफर रुकने वाला नहीं है।

0: लगे।
1: जी सामने नाम सुन रहे हैं आप इस वक्त रेडियो पैगाम ग्लोबल एफएम 91 एंड रेडियो मन से केसन की आवाज। केसन का टी टाइम है। सभी लोगों की दफा फिर से खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया है उन्हें भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम करेंगे। जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान ढेर सारी प्रोडक्ट बना के रेडी है जनाब आप लोगों के लिए। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है जनाब आपके आस पास, अगर आप अपने करीबी दुकानदार के पास जाएंगे तो जनाब आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। क्योंकि जनाब हमारी कोशिश होती है कि जब हमारी आवाज किसी भी इलाके में पहुंचे, चाहे डेर असमिल खान है, चाहे पहाड़पुर है, गिरदनवा के इलाके हैं, डेर असमिल खान प्लस गिरदनवा के इलाके या फिर टांग के एरियाज, तो जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हो। क्योंकि जनाब हमारी आवाज के अंदर भी जादू है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी जादू है। आज ये जादू आपको मजबूर करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके जेब से पैसे निकालें और केसन के प्रोडक्ट खरीद करके जी इस्तेमाल करें। केसन के बहुत सारी प्रोडक्ट, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सामिनी किराम के जिन्हें आपने हर रोज इस्तेमाल करना होता है और उनके बगैर आपका दिन ही नहीं गुजरता, उनके बगैर आपकी सुबह ही नहीं होती है। और ऐसी प्रोडक्ट्स का इंतखाब बहुत ही जरूरी होता है कि जो आप रोजमर्रा एक चीज है जो आपने स्पेशल खास तौर पर आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि छाइयों का मामला है, जैसे कि दाग धब्बों का मामला है, क्रीमों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर पिंपल्स का इशू है, यानी कि ये कभी कभी आपको होता है, हर वक्त ये नहीं होता कि आप इनसे रिलेटेड चीजें जो है कॉस्मेटिक्स की आप हर रोज इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कुछ चीजें जो रोजमर्रा की होती है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आपने उनको इस्तेमाल करना होता है, तो कोशिश क्या करें जो आपकी रोजमर्रा की जो डेली रूटीन की आपकी चीजें हैं उनके लिए आंखें खोल करके अपनी चीज खरीदा कीजिए। ठीक है जनाब, देखा कीजिए कि ये मैंने रोज इस्तेमाल करनी है और ये जब मैं रोज इस्तेमाल करूंगा या करूंगी तो क्या ये इतना जो मैं इसको रोज इस्तेमाल करूंगी क्या इसका कोई इफेक्ट भी मेरे ऊपर आएगा, क्या इसका कोई असर भी मेरे ऊपर आएगा। तो भाई जो चीजें जस्ट क्लिनजिंग पार्ट होता है जिनका, यानी कि सिर्फ वो आपकी सफाई करती है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के साबन आपको मार्केट में मिलते हैं जिनका काम सिर्फ आपके चेहरे के ऊपर धूल मट्टी और ऑयल को खत्म करना होता है, असर छोड़ना नहीं होता। यही वजह है कि आप सारी जिंदगी एक साबन इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन जब तक क्रीम इस्तेमाल ना करें आपको उस चीज का फायदा ही नहीं पहुंचता। इसी तरीके से रोजमर्रा जिंदगी में आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ुकात आप शैम्पू इस्तेमाल करते करते आपकी एक जिंदगी का आधी जिंदगी गुजर चुकी होती है लेकिन आपके बाल अच्छे नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साबुन हो गया या शैम्पू आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नरिशिंग फार्मूला नहीं है। ठीक है जनाब, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये नरिशिंग फार्मूला क्या होता है। ठीक है जनाब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्लिनजिंग करती हैं। ठीक है जनाब, उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं होते। ठीक है जनाब, एक्टिव इंग्रेडिएंट जब किसी प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं होते हैं तो वो ऊपर ऊपर से काम करेगा, आपकी स्किन के ऊपर जो है असर वसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब आप केसन के नरिशिंग प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज जब आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो चूंकि आप रोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जनाब, कोई मसला हो या ना हो आपने इस्तेमाल करना होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है जनाब, आपको रिजल्ट देना भी शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट आप रोजमर्रा रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपके ऊपर असर छोड़ रही है।

जनाब मैं बात कर रहा हूँ रोजमर्रा रूटीन में हर रोज नहाने की, और गर्मियां हैं तो जनाब हर बंदे ने हर रोज नहाना है, तो जनाब हमारी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कीजिए जो नरिशिंग फार्मूला है, जो विटामिन से भरपूर है, जो कि कंडीशनर से भरपूर है, और आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और इसका असर जो है आप अपने बालों के ऊपर देखते जाएंगे। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हमारी ये प्रोडक्ट है जिसको हम केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन बोलते हैं जनाब, और ये वाकई रेवोल्यूशन है, यानी कि ये एक इनकलाबी प्रोडक्ट है कि जनाब जो घर के 5 बंदों को एक साथ रिजल्ट देता है, यानी कि एक घर के अंदर जो है, यानी कि अब आपको पिंक, सब्ज, नीला, काला और गुलाबी रंग का जो है शैम्पू घर में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जनाब। इन तमाम शैम्पूस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक्टिव्स होते हैं, जो जनरली काम कर रहे होते हैं, हमने आपके लिए अपने इस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट केसन शैम्पू के अंदर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर दिया है जो आपके हेयर फॉल को रोकेगा, जो आपकी खुश्की को खत्म करेगा, इचिंग को खत्म करेगा, खारिश अगर आपके सर में हो रही है तो उसको भी खत्म करेगा, ठीक है जनाब। आपके बालों को सिल्क

0: नहीं जनाब, केसन का यही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो घर के 5 बंदे एक ही बोतल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। आपके बालों की खुश्की भी जाएगी, आपके बालों का गिरना भी जाएगा, आपके बाल बिल्कुल जी सिल्की होंगे, सॉफ्ट होंगे, सीधे होंगे, साथ में आपके बालों का कलर भी अच्छा होगा और बाल घने भी होंगे और साथ साथ में आपके बालों के अंदर एक शाइन भी आएगी, क्योंकि जनाब विटामिन B3, विटामिन B5 और कंडीशनर्स का मजमुआ है केसन शैम्पू, जो अपने अमेजिंग फार्मूले से आपको ढेर सारे फायदे पहुंचाता है। तो हर रोज आप रूटीन में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हर रोज आपने इस्तेमाल करनी होती है, एक शैम्पू और दूसरा साबुन, ठीक है जनाब। पहाड़पुर वाले और जो डेरा वाले हैं वो तो भाई अच्छे तरीके से जानते हैं कि भी केसन के जो साबुन है वो क्या है, लेकिन टांक वालों ऐसा ना हो कि आप साबुन लेने जाएं और आपको दुकानदार दिखाए एक छोटी सी टिकिया और आप बोले ये छोटा सा साबुन 200 रुपए का है। अक्सर ऐसा होता है, जो नया यूजर होता है, जो नया हमारा यूजर बनता है और जब वो हमारा साबुन लेने के लिए जाता है तो साबुन की टिकिया तो हमारी छोटी सी है, ठीक है जनाब। हम कहते हैं छोटा पैक और ये बड़ा धमाका है भाई, जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा। आपने आज तक आपकी जितनी भी जिंदगी गुजर चुकी है, 50 साल, 60 साल, 40 साल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपने इस जैसा हमारा जो केसन के साबुन है ना, क्योंकि हमारे साबुन जो है केमिकली बने हुए नहीं है, हमारे जो 6-7 साबुन है ये हैंडक्राफ्टेड सोप है, हाथ से बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, 6 किस्म के हमारे साबुन हैं और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनको अपने अपने फायदे आपको मिलेंगे। जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला जो साबुन है वो बकरी के दूध से बना हुआ, हाँ जिसको कहते हैं केसन गोट मिल्क सोप और इसका नाम है केसन मिल्की सोप। जना केसन मिल्की सोप आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हर स्किन को जो है सूट करता है, हर स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है और वाइटनिंग में इसका कोई सानी नहीं है, केसन मिल्की सोप। तो इसके हवाले से हम कहते हैं कि 4 मिनट 4 दिन, अभी वो मेरे पास एड नहीं पड़ा होगा, नहीं तो मैंने आपको सुनवाना था कि जनाब इसका जो जादू है केसन का, जो गोट मिल्क सोप है, ठीक है जनाब, बकरी के दूध से बना हुआ है, हम आपको कुदरत के खजाने भाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सूरत में आपकी तरफ लेके आते हैं। सो ये जो गोट मिल्क सोप से बना हुआ हमारा साबुन है, इसके बड़े फायदे हैं जनाब। आप सोच रहे होंगे भाई कोई एक तो बता भी दो जी, बड़े बड़े वो जिस तरह क्या कहते हैं सब्जी पे कोई बंदा बेच रहा हो ना, आम बेच रहा हो जो कोई चीज, तो उसे पूछो कैसे, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, ये नहीं बोलेगा कि यार ये आम है और ये इस इलाके का है और इसकी ये खासियत है, तो भाई बताएंगे सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत बहुत फायदे होते हैं मिल्की सोप के, जो दूध से बना हुआ जो है वो साबुन होता है। अच्छा 70 ग्राम के हमारे साबुन है, हमारे जितने भी साबुन है 6-7 किस्म के साबुन है, ठीक है जनाब। नंबर 1 जो हमारा, जो सबसे पहले हमने लॉन्च किया वो है केसन का मिल्की सोप, ठीक है जनाब। इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली और जिस वक्त में हमने ये लॉन्च किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हमने मिल्की सोप को लॉन्च किया था तो क्या हुआ, जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे मिल्की सोप, तो हम एक दूसरे से मशवरा भी कर रहे होते हैं ना, कंपनी वाले जो मालिकान होते हैं, भाई क्या लॉन्च करने जा रहे हो, तो हाल अवार करते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं, ये करने। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि हम मिल्की सोप, उन्होंने कहा यार आजकल तो दो फेस वॉश का है, आजकल साबुन कौन इस्तेमाल करता है, आप साबुन इस्तेमाल, क्योंकि ये पहली प्रोडक्ट थी हमारी कंपनी की, ठीक है जनाब, मिल्की सोप। तो लोग मशवरा दे रहे थे कि आपकी कंपनी की पहली चीज कोई आ रही है, यानी कि फेस वॉश और साबुन अभी तक आपका नहीं है, तो आप ऐसा करें कि फेस वॉश लॉन्च करें। लेकिन मैंने सुना हुआ था, बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च की, बहुत ज्यादा पढ़ा कि ये जो नेचुरल सोप होते हैं, जो हैंडक्राफ्टेड सोप होते हैं, ये आम साबुन जो केमिकल से बने हुए साबुन होते हैं, जैसे कि मार्केट में आपको डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स मिलते हैं, बड़े बड़े नाम है, लक्स टाइप और इस तरह के जो चीज होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं। जो हमारा साबुन है वो बिल्कुल 110% नेचुरल है। क्या इसकी निशानी होती है, अगर आप इसे ज्यादा हीट में रखेंगे ना, धूप के अंदर, जैसे कि टांक वालों से मैं मुखातिब हूँ या डेरा वालों से, अगर आपने चेक करना हो कि ये वाकई नेचुरल है, नेचुरल सोप जो होता है ना वो कोकोनट ऑयल से बना हुआ होता है, कोकोनट ऑयल, गरी के तेल से बना हुआ ये साबुन होता है, तो इसकी निशानी क्या होती है, आप इसे शदीद धूप के अंदर रखें तो थोड़ी देर बाद ये दूध बन जाएगा, ठीक है जनाब, यानी कि सोप पिघल जाएगा। लेकिन आप बाजार में बिकने वाले जितने भी साबुन है, आप धूप, क्या मैं कहता हूँ, आग के साथ भी ले जाए वो नहीं पी लेंगे, क्योंकि वो केमिकलाइज तरीके से बने हुए होते हैं और केसन के जितने सोप हैं ये इस तरीके से। तो मुझे बड़ा शौक था कि हम नेचुरल सोप बनाएं, तो हमने लॉन्च किया गोट मिल्क सोप। उस वक्त इसका नाम केसन वाइटनिंग सोप होता था, अभी हमने इसका नाम मिल्की सोप किया है। तो जब हमने लॉन्च किया तो भाई ये तो फ्लैग कर गया। आप यकीन कीजिए कि जब हमने आके रेडियो के ऊपर 91 के ऊपर बताया कि हमने गोट मिल्क बकरी के दूध से मिला मिलके एक साबुन बनाया है और इसके बड़े फायदे हैं, और एक क्वीन गुजरी हैं, मलका एक गुजरी हैं, कैलोपेत्रा उनका नाम था, और उनकी वो बहुत खूबसूरत थी। तो उनसे जब पूछा जाता था कि आप क्या इस्तेमाल करती हैं, तो उसके दो उस वक्त में तो ना ही बॉडी वॉश होते थे, ना ही उस वक्त कोई फेस वॉश या इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो कहती थी कि मैं दूध से नहाती हूँ, ठीक है जनाब, और डंकी गधी गधे के दूध से जो है ना वो नहाती थी। ये तारीख में है, आप अभी गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दूध की कितनी फादियत है। तो वो कहती थी कि मैं अपने आप को गोरा करने के लिए जो है ना दूध का इस्तेमाल करती हूँ। सो उसके बाद फिर ये ट्रेंड चला आगे और गोट मिल्क, फिर दूध के अंदर गाय का दूध भी होता है, बकरी का दूध भी होता है, ऊंटनी का भी दूध होता है, लेकिन जो भेड़ का दूध होता है, जो बकरी का दूध होता है, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैं यकीन कीजिए कि अगर आपका चेहरा किसी भी क्रीम से ख़राब हो गया हो, आपका चेहरा अगर किसी भी क्रीम से ख़राब हो गया है, आपने कोई मेकअप वगैरह किया और वो एक्सपायरी था और उसने आपको रिएक्शन कर दिया है, या आपने ब्लीच वगैरह की और वो इतनी हार्श थी कि आपका चेहरा रेड हो गया है, या आपकी स्किन ख़राब हो गई है, आप सिर्फ दो चीज़ें केसन की खरीदिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि 3 दिन के अंदर आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अंदर, नंबर 1 केसन का मिल्की सोप जो कि गोट मिल्क से बना हुआ है, और दूसरा अर्के गुलाब प्लस विटामिन सी। इन दोनों चीजों को 3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, आपका खराब से खराब जो चेहरा है ना, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो जब हमने इसको लॉन्च किया और लोगों को इसके फायदे बताया कि 4 दिन के अंदर इसका रिजल्ट है, लेकिन शर्त यह है कि 2 मिनट सुबह आपने चेहरे को धोना है और 2 मिनट शाम को आपने चेहरे को धोना है, ठीक है जनाब। मिल्की सोप की मैं बात कर रहा हूँ, केसन का मिल्की सोप। कल हमने बात की थी जाफरानी सोप के हवाले से, वो हमारा लेटेस्ट है। जो सोप नंबर 7 है वो जाफरानी सोप है, जो मैं आपको कल बता रहा था। सोप नंबर 1 है जो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था, वो था मिल्की सोप। तो पहले और आखिरी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी रीजन क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो भाई हम तो आके मार्केट में छा गए, आप यकीन कीजिए कि हर दुकानदार कार्टन कार्टन मंगवाना शुरू हो गया कि भाई ये इतनी जबरदस्त चीज, इतनी प्यारी प्रोडक्ट, यानी कि फेस वॉश से भी ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट ये। जैसे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और हमने बेनिफिट्स इसको बताया कि ये नेचुरल है, ठीक है जनाब। अच्छा, इससे पहले और कंपनियों के गोट मिल्क मौजूद थे जो कि हमसे साइज में बड़े थे, 100 ग्राम 150 ग्राम, और उनकी कीमत जो है 150 रुपए 120 रुपए थी, और हमारा उस वक्त भी 200 रुपए का था। तो लेकिन क्या है कि जब हम हमसे कुछ पैसे लेते हैं तो भाई कुछ डाल के देते हैं आपको। ये जो कस्टमर है ना, आप लोग बड़े सियाने होते हैं, अगर आपको कुछ डाल के ना देना, आप मुंह के ऊपर मारते हैं हमारे वो चीज। हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि अगर हम अल्लाह ना करे कि कभी हमारी ये सोच हो कि 2 नंबरी से हम आपसे पैसे बिटोरे, लेकिन हमसे ज्यादा सियाने आप लोग हैं। आप एक दफा खरीदते हैं, दूसरी दफा मुंह के ऊपर मारते हैं कि भाई ये 200 रुपए की चीज है जो आप लोग हमारे पर 200 के बीच रहे बेच रहे हो। तो भाई केस मैं आपसे बात कर रहा था कि रोजमर्रा लाइफ में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका ताल्लुक आपकी किसी बीमारी से नहीं होता, किसी की इंटेंस सूरत हाल से नहीं होता, लेकिन आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर आप नरिशिंग यूज करेंगे, ठीक है, जब नरिशिंग प्रोडक्ट यूज करेंगे जैसे कि ये हमारा मिल्की सोप है और साथ में हमारा केसन का शैम्पू है, तो यकीन कीजिए आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने हैं। जी जनाब, कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं और इंतजार में बैठे होते हैं कि कैसे 4:30 बजे तो हम कॉल करें। तो फर्स्ट कॉलर जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, हाल सुनाओ
0: जनाब, क्या हाल है भाई जान, ठीक ठाक ही तो साहब?
1: शुक्र है, तुसा हाल हो?
0: करम है अल्लाह दा, ना दसो अपना नाम शरीफ।
1: ये गाल है ना, बात तुसा भूल बंदे रे ना, याददाश्त कबूल होती गई तुम्हारी।
0: अच्छा जी, ना दसो चा बहुत सारे आजकल सा ना लिसनर होने तो बाद याद नहीं रहंदे ना, सुनाओ सी ना दसो अपना, उन दे बाद बात को वेलकम करेंदे असा। हेलो हेलो, हाँ जनाब, बंदा बात करते करते जो है गायब हो गया, और बंदे की आवाज जो है गायब हो गई है बिल्कुल। चलो जी जो भी है भाई फिर से कॉल कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल खामोश हो गई है। अच्छा तना जनाब, ये जो रोजाना की खूबसूरती की कहानी है ये केसन के साथ गुजारें आप, ठीक है जनाब। अपनी रूटीन को थोड़ा सा सेट कीजिए और डेली जब चेहरा धोते हैं तो केसन के मिल्की सोप से धोइए, ठीक है जनाब, गोट मिल्क सोप जो है। अच्छा दूसरा इसका एक इफेक्ट गर्मियों में ये एक है कि इसके अंदर जो गोट मिल्क है वो आपको सूरज की जो खतरनाक शुआएं उनके जो असरात है ना उनको भी ये कम करता है, ठीक है जनाब, उनको भी कम करता है। तो जरूर ट्राई करके हमें बताइएगा कि केसन का मिल्की सोप कैसा है। एक दफा फिर से भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हाल खरीद भाई खरीयत है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं के ना शरीफ दसो इन कोल पहले के वत आवाज कट वने फसल कटाई वगैरह खत्म थी गई लोशो?
1: बिल्कुल खत्म थी गया नुका, अमन सुकून थी गया,
0: अमन सुकून हुन तुसा ढेरी वगैरह चा की दी वे पैसे वगैरह जमा करके हुन ईद दी शॉपिंग करे सो?
1: जी जी इंशाल्लाह जरूर।
0: ईद दी शॉपिंग दी केसन दा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, बस सिर्फ कपड़े जूतियां किन सो?
1: ना ना केसन दा हिस्सा ता शुरू ला को शुरू है ना।
0: अच्छा जी बात के सोची पे वे जे हुन पैसे कमाए वे अपना इंदु चो लो दते तो केसन दे के रिशद ला सो ए दसो मैं पहले
1: असा केसन दी तकरीबन कोई हिक दू यो बस गेता है नहीं तो बाकी सारे असा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर चुके हैं।
0: इस्तेमाल करे दे बेदे। अच्छा ए मैं आज दसना बेटा कि सारा जरा गोट मिल्क है दूध वाला जरा साबुन है मिल्की सोप ए तोरे इस्तेमाल ही चाहे सही?
1: जी जी आवाज कट गई है।
0: मैं के सारा मिल्की सोप जरा है गोट मिल्क ए तोरे इस्तेमाल ही चाहे के ना?
1: जी जी एक दफा आया है ते वाला मौका नहीं मिला, हुन बात कोशिश है कि जरा ना एक इस्तेमाल कर सकूं।
0: की अच्छा लगे तो जेले इस्तेमाल कीता वेदा
1: बड़ी
0: सेल है रंगपुर अड्डे को भरे खड़े नी वे ना सही? हां तो बहुत शुक्रिया जी शाह साहब नाराज हैं सारे को। वाह जी वाह, आवाज तो बहुत ज्यादा अपना करती पई है, बहुत ज्यादा ब्रेक थी नहीं पई है। चलो ठीक है मैं तुरंत पैगाम मेरे तक पहुंच गया जी। शाह साहब सर नाल होंदे हैं बहुत ज्यादा सर प्रोग्राम सुनदे हैं तो बड़ी गपशप भी लगी है। लेकिन पता नहीं वो आदन की खलील भी मेरी कॉल नहीं चाहते हैं जी, मेरी तो दुश्मनी है कोई पुरानी है जी, मेरी जमीन मारी वे वे तुसा कोई मैं तो नहीं कॉल ना चाहता। शाह साहब कॉल करो इंशाल्लाह सतरी कॉल जासूं, ठीक है जी। तो जनाब ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजमर्रा रूटीन में कोई आपको मसला है या नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि मसला होगा तो केसन के प्रोडक्ट खरीदेंगे, छाइयां आएंगे तो केसन की ग्लूटा क्रीम खरीदेंगे, ठीक है जनाब। क्या जनाब दाने आएंगे तो गो पिंपल खरीदेंगे? नहीं भाई, ऐसे ही आपने चीजें खरीदनी हमारी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, सड़े माशे
2: करेंगे खलील भाई शाही हो जोर बराबर मिजाजी ने मखरी को करेंगे चाली लिसनर्स आप सब खैर खरिया से आपकी कंपनी अच्छी है माशाल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह मिजाजू ना बेहतरीन दी
2: माशाल्लाह। मैं यार पख्तून राजी मैं पख्तून बाब खल्क को देर देर मत खपकेगी।
0: अच्छा खपकेगी कि ताजा पश्तो ना सही इस्तेमाल करेगी हैं जी? हल्के पुलके पठान वे होंगे ना तो जमे से लेकिन ओरिजिनल पठाना को पछतो तारे सिर उतो पैंद है सही पता हो तो
2: अच्छा
0: चलो ठीक है। नजर हसन फ्रॉम रेडियो पैगाम कच्ची कारगढ़ से हैं जी।
2: जी जी आप अच्छे हैं सर, आपके लिस्टर को बहुत बहुत सलाम जी।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि भाई जो नजर हसन आप हमारे साथ, मैंने कहा दो रूटीन की जो चीजें हैं, कोई मसला हो या ना हो, केसन शैम्पू और मिल्की सोप भाई रोजाना इस्तेमाल में होना चाहिए।
2: मैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल्की सोप से आजकल नहाता हूँ।
0: कैसा मिल्की सोप का एहसास, उसकी फीलिंग कैसी है नजर हसन?
2: बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा बड़ा मतलब है ये मॉइस्चराइजर टाइप और इसकी खुशबू और इसकी सफाई मुझे मजा,
0: पूरे जिस्म में खुशबू सी फैल जाती है और मॉइस्चराइजेशन। हाँ। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आम साबुन से जब आप चेहरा धोते हैं, जिस्म धोते हैं तो खुश्क हो जाता है, खुश्की हो जाती है बिल्कुल, इससे नहीं होती होगी?
2: बिल्कुल नहीं, नहीं सफाई करता है स्किन को, साफ और नरम करता है, मजा देता है, खुशबू भी है और चमकदार बनाता है। बस मैं तो साफ सुथरा,
0: असल में ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असर भी छोड़ता है आपके ऊपर। हेलो
2: जी सर,
0: मैंने कहा ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये साबुन असर छोड़ता है अपना जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
2: असर छोड़ता है, असर छोड़ा है तो मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ ना जी।
0: बिल्कुल जी, असर छोड़ा है तभी तो आप नहीं छोड़ रहे इसको।
2: जैसे पांच गिराई से राजा गफूर आपको आखिरी मिनट में नहीं छोड़ता।
0: आखिरी मिनट में
2: सर को बहुत बहुत सलाम, आपकी कंपनी को सलाम और इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं और आपके साथ हैं और अल्लाह हमारे और आपके साथ।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह भी हमारे साथ है और आप भी हमारे साथ हैं जनाब। सर नजर हसन हमारे साथ मौजूद थे और रेडियो प्रोग्राम पर हमें सुन रहे होते हैं और आपको आपको अक्सर नजर आता होगा कि मोस्टली कॉलर जो है आपको पहाड़पुर से मिल रहे होते हैं, क्योंकि पहाड़पुर उस वक्त हमने एफएम स्टार्ट किया था जब ये कंपनी 2021 से सबसे पहले हमने इस कंपनी का प्रोग्राम जो है पहाड़पुर से स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो कंपनी का हमारा प्रोग्राम था ना वो पहाड़पुर से स्टार्ट हुआ था, यही वजह है कि आपको बहुत ज्यादा हमारे यूजर पहाड़पुर साइड और सराउंडिंग के ऊपर मिलते हैं और आपका कभी चक्कर लगे पहाड़पुर में तो एक एक दुकान के तीन तीन चार चार रैक जो है ना वो केसन से भरे पड़े होते हैं, तीन तीन चार चार जो है रैक जो है वो भरे पड़े होते हैं। इस वक्त देखते हैं जनाब एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: गुलखान, वेलकम
3: तकड़े
0: बिल्कुल तकड़े। आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
3: अल्लाह शुक्र है, तुम कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज मुझे इंतजार था, मैंने कहा गुलखान कॉल जरूर करेगा आज।
3: ओए तुम्हारा तेल ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया।
0: वो कौन सा, वो दर्द वाला जो तेल था?
3: वही वही, सारा दर्द ठीक हो गया,
0: सारा दर्द ठीक हो गया। कितने दफा लगाया आपने खान गुल?
3: मैंने दो तीन दफा लगाया यार, इतना मजा आया, इतना मजा आया,
0: मजा
3: कि दर्द मर्द ठीक हो गया।
0: अच्छा मजा आता है, उससे तो सुकून आता है, दर्द खत्म होता है तो
3: यार वो गुदगुदी होता है ना।
0: अच्छा गुदगुदी होता है, तो बाकी आपने इस्तेमाल किया खान गुल?
3: हाँ ना।
0: अच्छा
3: मैंने ऐसे दुकान नहीं किया यार।
0: अच्छा तो फिर कितने दफा इस्तेमाल के बाद आराम आया खान गुल को?
3: दो तीन दफा इस्तेमाल किया यार, बड़ा फर्क है,
0: बड़ा फर्क है। तो अभी आप खान गुल क्या सोच रहे हैं कि भाई ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है तो इसकी और चीजें भी खरीदें या और चीजें नहीं, बस यही 600-700 रुपया लग गया है, यही एक साल तक काफी है खान गुल?
3: यार हम इसको इसको वजीरिस्तान भेजेगा, वजीरिस्तान,
0: वजीरिस्तान भेजेगा।
3: अच्छा ना यार,
0: ओहो यानी कि वजीरिस्तान में कोई है आपके बंदे इधर रिश्तेदार वगैरह, तो आपके सवाना में है सारे रिश्तेदार?
3: हाँ ना वजीरिस्तान भेजिएगा, बड़ा काम की चीज है यार।
0: यार गुलखान आप हमारे लिए दुआ करो, हमारी जो है वाना के एफएम के साथ भी बात हो गई है तो इंशाल्लाह वाना के लोग भी हमारा प्रोग्राम सुनेंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर, और फिर उधर ये वाला जो तेल है जो आपने लगाया है फिर उधर भी आपने कॉल करके लोगों को बताना है कि भाई मैंने तो डेरा में होते हुए लगा लिया है, अब आपके वाना में भी आ गया है।
3: वाह जी वाह जबरदस्त बात है यार। यार गर्मियों में दाना निकलते है मुंह पे, किसका क्या वजह है? मीठा खाते है या क्या वजह?
0: आम शाम
3: क्यों खाने निकलते हैं गर्मियों में?
0: आम शाम तो नहीं खाया आपने? आम्ब
3: यार, यार आम्ब शाम तो नहीं खाए, खरबूज तरबूज वगैरह ये मीठी मीठी चीजें मुझे आ रही यार ये खाते है।
0: आम्ब क्यों नहीं खाए आम, पहले ये बताओ आम्ब क्यों नहीं खाया आपने?
3: यार अभी तो स्टोर वाला आम है यार, कैसे खाए? अम्बलिया खाते, अम्बलिया।
0: अम्बली तो मीठी नहीं होती यार, वो तो लड़कियां खाती है, मर्द थोड़ी खाता है यार अम्बली।
3: हम उसका मुरब्बा बना के खाते है यार,
0: चीनी डाल के।
3: कोई आधा किलो में आधा किलो अम्बली में आधा किलो चीनी डाल के।
0: अच्छा जी, लेकिन खानगुल खानगुल ये जो
3: तुम्हारा हमारा भाभी तुमको कुछ नहीं खिलाता है ना?
0: खिलाता है यार, क्यों नहीं खिलाता? देखो इतना हेल्दी तो हूँ मैं, और कितना मोटा हो जाऊँ बताओ मुझे है?
3: कि वो तुम्हारा मोटा हो जो कह रहे, वो तुम्हारा पक्की नहीं है। हाँ। वो खा लेना फिर पतला हो जाना।
0: अच्छा यार ठीक है, यानी कि मोटे हो जाए तो फिर भी आसानी है हमारे लिए, हमारे पास तो वेट कम वाली पक्की भी है। वो खानगुल मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो, वो आपने ऑयल इस्तेमाल किया तो आपका दर्द खत्म हो गया, गर्दन का मचे खत्म हो गया आपका?
3: वही सारा मचे खत्म हो गया यार।
0: अच्छा
3: ये देखो, हम डांस भी कर सकते हैं, डब्बा जू भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
0: अच्छा सारे मसले हल हो गए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि गर्मी के अंदर दाने क्यों निकलते हैं, तो भाई ये होता ये है कि आपका जो चेहरा है ना, चेहरा उसके अंदर सुराख होता है, मसाम होता है, मसाम उसके अंदर से तेल निकलता है, उसके अंदर से तेल निकलता है चेहरे के अंदर से।
3: यार ये तेल कोई काम का होता है कि नहीं होता है? इस्तेमाल कर सकते हैं कि?
0: और नहीं भाई, अल्लाह का नाम मानो का इस्तेमाल क्या होता है? ये इतना होता है कि बस आपके चेहरे
3: के शुतुरमुर्ग का तेल निकलता है, इस्तेमाल करो
0: नहीं
3: फायदा देगा।
0: नहीं
3: तो हम तो उसका ज्यादा है यार, हम तो
0: नहीं। खानगुल मेरी बात सुनो खानगुल, ये जो होता है ना, ये जो आपके मसाम के अंदर से तेल निकलता है, ये कुदरती तौर पर निकलता है कि आपका चेहरा खुश्क ना रहे, आपके चेहरे को ऑयल की जरूरत होती है। लेकिन गर्मियों में जब गर्मी बढ़ती है तो ये और ज्यादा निकलने लगता है, जब ज्यादा निकलता है और साथ में पसीना आता है, तो इस वजह से आपके मसाम के अंदर क्या होता है कि वो ठहर जाता है तेल और दाने निकलते हैं। अब इसका हल पूछो ना मुझसे, इसका हल क्या है?
3: वही तो पूछते यार, इस पर क्या लगाएगा यार?
0: हाँ, इसके ऊपर ये
3: कोई कहते है कि मिट्टी लगाओ, कोई कहते है कि साबुन लगाओ।
0: हाँ,
3: कोई कहते है, क्या कहते हैं?
0: अच्छा इसमें ये है खानगुल कि आपने हमारी जो प्रोडक्ट है ना, गो पिंपल ठीक है,
3: ये
0: गो पिंपल
3: वो तो पिंपल वो अच्छा दानों को कहता है।
0: हाँ पिंपल दानों को कहता है ना, पिंपल नो पिंपल, अब नो मोर पिंपल, तो गो कहते हैं दफा हो जाओ, चले जाओ, यानी कि हम दानों को कह रहे हैं कि दानों अब तुम लोग जाओ, ठीक है जी, गो पिंपल। सो ये गो पिंपल जब आप लगाओगे ना, तो ये तेल जो आपके चेहरे से निकलता है ना, फिर नहीं निकलेगा।
3: नहीं ये गो पिंपल क्या है, कोई क्रीम है, साबुन है?
0: ये गो पिंपल साबुन भी है, अगर आपके पास पैसे थोड़े हो तो फिर आप गो पिंपल का साबुन लें, अगर आप पैसे बहुत सारे हैं, दुबई का पैसा है, अमारात का पैसा है, कतर का पैसा है, ठीक है जनाब, सऊदी अरब का पैसा है, तो फिर फेस वॉश गो पिंपल का। हाँ तो दोनों चीजें कोई भी इस्तेमाल करोगे दिन में दो दफा, यानी कि सुबह भी लगाओगे और शाम को भी लगाओगे, तो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल जी तेल नहीं निकलेगा, और जब तेल नहीं निकलेगा तो फिर दाना नहीं निकलेगा खानगुला।
3: तुमको दुकान पर किसने बैठाया, तुम तो डॉक्टर बन जाते यार।
0: डॉक्टर, बस डॉक्टर की फील्ड से इधर आए, हमने कहा अब लोगों को जाके डॉक्टरी वाली चीजें दिखाते हैं, बगैर डॉक्टर के हमसे बातें सुने हमारी चीजें खरीदें और कम पैसों के अंदर ठीक ठाक हो जाएं, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े।
3: हम बस इतवार को तुम्हारे पास आएगा, मुझे दोनों पिंपल विंपल वाली चीजें मुझे देना, हम ले जाएगा।
0: दोनों क्यों ले जाएगा, एक ले जाओगे ना, या गो पिंपल का फेस वॉश या गो पिंपल का साबुन।
3: बस ठीक है हम ले जाएगा, खुदा पामान, अपना ख्याल रखना।
0: ओके ओके जी।

0: जनाब, खान गुल हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और हमारी कंपनी को ऐसा ऐसा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। पहले शिफा है दर्द इन्होंने लिया जनाब, इनकी गर्दन ठीक हो गई। अब कह रहे हैं कि जनाब उनके चेहरे मुबारक के ऊपर दाने जाने हैं, तो उन दानों को वो खत्म करना चाहते हैं। तो जनाब वाई नाट, जनाब केसन है ना आप लोगों के पास? तो जनाब इस वक्त एक और कॉल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब। एमबी साहब फ्रॉम पहाड़पुर।
1: जनाब जनाब माशाल्लाह फ्रॉम जबरदस्त फ्रॉम नाम ही जबरदस्त टी टाइम।
0: हाँ जी टी टाइम
1: में है जो हूँ मशहूर केसन जी मतलब टी यानी पत्ती का बंदोबस्त करना कोशिश कर रही।
0: केसन टी होनी चाहिए सर है
1: होनी चाहिए यकीन करो जी ना, इतना जबरदस्त प्यारा है ना तो फ्रॉम अच्छा है तो बस केसन की पत्ती तो लाज करनी चाहिए।
0: हाँ असा इन टाइम जी सब चाय मिलती है जी तो मिलती है मैं कोई मिलती है तो चाय जी बड़ी हो भी केसन दी इंग्रेडिएंट नाल बड़ी हुई होवे कि उन दी के बाद जिक्र न होवे कि भाई केसन दे टाइम दी भी केसन दी शो दी भी केसन दी ही चाय
1: केसन दी चाय होवे बहुत मजा आवे सी
0: मजा आवे सी। तजवीज बिल्कुल आ गई सारे सामने गौर फिकर भी करे सो
1: इंशाल्लाह ठीक है।
0: अच्छा उन्हें जंगा बने ते मैं पेर बने
1: जंगा बदियां सर
0: माशाल्लाह मिल्की सोप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें दे वे तुसा वाहिद बंदे वे जेरे के छी छी पीस एक एक दर्जन घिन के वेंदे वे छोटा जिया साबण है निक्की जेरी चक्की है 200 रुपए दी है इंदे निस्बत बाजार इच वडे वडे साबण 150 दे मिल वेंदे वा तुसा एदे पैसे छोटी चक्की ते क्यों लेंदे वे सही
1: मिल्की
0: सोप को तुसा हुन एंजॉय करन दे खड़े रहे सही
1: मिल्की सोप ये तसा दीवानिया सै बस ताई को बर्फी दा पीस आ दे सै
0: हां जी होंदी भी बर्फी हुन तो बे साबण मेरे ख्याल है के वॉशरूम में पे चंगे भी ने लगदे होसन के त
1: सारा मिल्की सोप होने से करीबन
0: हां जी मिल्की सोप
1: जेनी मेंबर हैं जेरे मिसाल ओ दफरानी सब इस्तेमाल करें हां
0: हां
1: लेकिन सारी तो आपकी पसंद जरन से वो मिल्की सोप है
0: सारी तो पसंद है तू हां जी
1: हां शौनी लेने इतना मौत ही हुए सारा जरन से
0: परेशी थी बंदे हैं से
1: जी
0: बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया नवाजी
1: सारे सुन को सलाम जी जितने लोग सारे को सुन दे पैन ठाक अली इन सारे वो भी रहिन सारे मेहमान हूं
0: ठीक है सारों को सलाम जी थैंक यू सो वेरी मच जी बहुत शुक्रिया जी बस में ले सज्जन एमबी साहब हमारे साथ मौजूद थे पहाड़पुर से और कहते हैं भाई हमारे घर के अंदर दो ही साबुन इस्तेमाल होते हैं एक केसन का मिल्की सोप और दूसरा केसन का जाफरानी सोप।

0: जी जनाब, आप लोगों के मैसेजेस दुर्योधन हमारे साथ हैं, लेकिन जो है दुर्योधन से पहले हमारे साथ जो है एक और हस्ती तशरीफ फरमा है, वेलकम करेंगे जनाब बादब बा मुलायजा होशियार तशरीफ लाते हैं असमत पहलवान जनाब, वेलकम।
1: हेलो।
0: इतने पुरतपाक तरीके ना करा तुरा क्या इस्तकबाल कीते, पहले दसो। हेलो। अच्छा जी, ये हमारे जो भाई है ना, ये जब भी गाल करते हैं ना, इनकी तरफ सिग्नल का इतना इशू होता है, इतना इशू होता है। पहले ये कहते थे कि आपका प्रोग्राम रात को होता है, तो रात को जो है टावर की बैटरियां जो है डिम हो जाती हैं जनाब, तो उनकी कवरेज ज्यादा नहीं होती। तो अब तो भाई सूरज मियां भी होंगे। हाँ जनाब, सूरज चमक दमक रहे हैं। और एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हमारी सोनिया आप आ चुकी है 91 की नुमाइंदगी करती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई शोधा एफएम है ना हमारे तीनों एफएम के अंदर, तो वो 91 है आजकल, पता हो आप लोगों को।
1: ये भाई मैं भी दिल की सोप इस्तेमाल करती हूँ, सर्दियों में इसकी बहुत ज्यादा फायदे है ना, आपको लोशन नहीं लगाना पड़ता।
0: अच्छा, सर्दियों में आप हमारा बहुत ज्यादा यूज करती है मिल्की, तो लोशन
1: गर्मी में भी यूज हो रहा है, लेकिन सर्दियों में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, फिर लोशन नहीं लगा, जब इससे चेहरा धो लेते हैं लोशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती,
0: जरूरत नहीं पड़ती। तो बाकी ये एक नेचुरल सोप का फायदा होता है, बाकी सोप जो बाजार से आप खरीदते हैं वो बहुत ज्यादा खुश्की कर देते हैं आपके चेहरे के ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: और खुश
1: मैं मतलब मेरी उम्र ज्यादा है तो बच्चियां भी लगाती है लोशन चेहरे पे, लेकिन मैंने कभी भी लोशन नहीं लगाया, मेरा चेहरा बिल्कुल
0: हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इसकी ये तो खूबी है मॉइस्चराइजेशन, तो इसके अंदर जैसे नजर हसन भाई कह रहे थे ना कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा इसके अंदर है, यानी कि बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती है। तो साथ साथ में इसके बहुत सारे और फायदे हैं आपको स्किन के हवाले से, क्योंकि जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है ना, तो वो फिर आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो माशाल्लाह उस दिन आप शिफाय दर्द लेके गई थी, ताजा ताजा आपको दर्द उठा था टांग का, तो सुनाइए क्या हाल है आपका, पहले तो हाल पूछना चाहिए था।
1: ठीक है, अब बेहतर है शुक्र है, लेकिन कल बुखार हो गया था, जैसे थोड़ी तबियत खराब थी, लेकिन टांग का दर्द शुक्र ठीक है।
0: अच्छा, जो माशाल्लाह जो आप लेके गई थी, आपने कितने दफा लगाया हमारा शिफाय दर्द?
1: मैंने 4 मरतबा, एक सुबह को, एक दोपहर को और एक रात को।
0: तो
1: दो मरतबा लगाए तो फिर रिजल्ट आता है ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है,
1: एक दिन में 2 मरतबा जरूर लगाया चाहिए, जो भी सुन रहे हैं अगर 1 मरतबा लगाए और फिर 2-3 दिन के बाद लगाए तो फिर रिजल्ट नहीं आता।
0: हाँ बिल्कुल, ये आप डॉक्टर के असूल यही होता है ना, अगर आप एक टाइम टेबलेट खाएं और 2-3 दिन ना खाएं तो फिर वो असर करेगी नहीं करेगी,
1: वो फिर कहते हैं दोबारा से आप मुकम्मल कोर्स करें,
0: मुकम्मल
1: ही होता है, किसी चीज को इस्तेमाल करें तो उसको जरूर 2 मरतबा
0: बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आप मुतमईन है माशाल्लाह, अभी 2-3 दिन पहले लेकर गई थी आप हमसे केस।
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सोनिया आप ही, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी, हमारे साथ सोनिया आप ही एंड हमारे साथ। और ये 3 दिन पहले मैं खुद शॉप पर मौजूद था जब ये आई थी और कहती कि मेरी टांग में फिर जो है दर्द शुरू हुआ है, तो मेरे पास आयल खत्म था, तो मैंने कहा चल लेने आ जाऊं। तो देखिए आपने बता रही कि 4 दफा, यानी कि 2 दिन उन्होंने लगाया है, तो उनकी टांग का दर्द, अगर यही टांग का दर्द लेकर जो किसी नैरो डॉक्टर के पास जाती, ठीक है जनाब, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाती, किसी मेडिकल के पास जाती, तो यकीन करिए इनके 5-6 हजार रुपए खुल जाने थे। और यहाँ पर आयल जो है टोटल इनका 200 रुपए का, 100 रुपए का भी नहीं लगा होगा, और इनको सुकून मिल गया। ठीक है जनाब, मैसेजेस आप लोगों के मैं शामिल करता हूँ, फिर आप लोगों की कॉल्स का अगर वक्त मिला तो आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करके बैठे हुए हैं जी। दुर्योधन है द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, वेलकम टू माय फेवरेट शो विद आरजे खलील थाबे शवान। ओह माय गॉड, कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ लड़की, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? ठीक हो? एंड आपके लिसनर, मेरे लिसनर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। एंड आज मुझे लिसनर बताएं कौन मुझे कब से जानता है और किसको मैं अच्छी लगती हूँ, हैं दिस कोलावेरी केटीए को तो स्टार्ट से ही मैं अच्छी नहीं लगती, उनके अलावा आप सब मुझे बताएं जी जनाब, कितने लोग सुन रहे हैं, 91 वाले सुन रहे हैं एंड रेडियो पैगाम वाले सुन रहे हैं, टांग वालों को तो, टांग वाले तो अभी आपको जानते नहीं है कि दुर्योधन है कौन। दुर्योधन जनाब हमारे डेरे इस्माइल खान की बहुत बड़ी नातख्वां हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हम इनकी आवाज नहीं सुन पाए हैं। ठीक है जनाब, ड्यू टू परमिशन, इनको परमिशन नहीं है रेडियो के ऊपर आके अपनी आवाज सुनाने की, अदरवाइज ये बहुत बड़े प्रोग्राम करती हैं, मिलाद के प्रोग्राम और सारा कुछ मैं आपको बताता चलूं। पहाड़पुर वाले जानते, तो पहाड़पुर वाले कौन कौन भाई फैन है दुर्योधन के, एंड दला भाई आप कैसे हैं? किशन शॉप कैसी जा रही है? सोनिया अभी आप कैसी हैं? एंड दो दिन से शो में कॉल क्यों नहीं किया आपने? देखिए वो बीमार थी भाई, इसी वजह से कॉल नहीं किया। एंड मानूर शहजादी मैं बाकी तो ठीक हूँ, मगर कल थोड़ी चोट लगी तो डिस्टर्ब हूँ उसकी वजह से। और लाइव अच्छी, लाइफ मेरी अच्छी जा रही है, शुक्र अल्लाह। स्पेशल सलाम टू उस्ताद जी एंड ऑल लिसनर्स, फकत अरूबा वफा फातिमा। पहाड़पुर वालों ने बताना है, डेरे वालों ने बताना है भाई कौन कौन किस किस को दुरिया दिन अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद हमजा खिमटा फ्रॉम मूसा वाली फिपला। आज की खूबसूरत बात है, वक्त ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, मगर वो चीज है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। सब लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम जनाब, गड़ा शहबाज, गड़ा शहबाज अब्दुल हादी सड़े माशे। जनाब साकिब हमारे साथ मौजूद, बहुत सारी पश्तो आगे क्या नाम है अब्दुल हादी ने लिखी होती है लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सकता ना। हम साकिब चश्मा मिराज से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खलील चाचू आपको और सब सुनने वालों को बहुत सारे सलाम। चलो जी सलाम सलाम सलाम होना, आपके सलाम जो है पहुंच गए और सुनने वालों ने वालेकुम सलाम कह दिया। ये रेडियो के थ्रू जब सलाम आते हैं ना वालेकुम सलाम बोला करें भाई, इसका भी सवाब होता है। ठीक है जनाब, जिस तरह मैं आती आपको सलाम करता हूँ तो आप उसके जवाब में इसी सुनते मदरा कर दिली दिल में जुबान से वालेकुम सलाम भाई जान क्या दिया कह रहे हैं। जनाब ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान वालों से मुखातिब हूँ भाई, जो लोग बाकरी बाजार की तरफ रहते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो मार्केट है गिलानी मार्केट, यहाँ पर है हाजी जुमा होल सेलर है जनाब, उनके पास केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आप भाई उनके पास जरूर जाया करें, उनसे खरीदा करें। बाकरी बाजार के अंदर और भी होल सेलर बैठे हुए हैं, जैसे कि हाजी गुल जनरल स्टोर है, वहां पर बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं केसन की। यकीन करें हमसे भी सस्ती देते हैं, हमसे भी 10-5 रुपए वो बचत रख के चीजें बेच देते हैं। ठीक है जनाब, तो हाजी गुल जनरल स्टोर बाकरी बाजार, राजा जनरल स्टोर बाकरी बाजार, और चुगल्ला के साथ ही जनाब अहमद जनरल स्टोर है, वहां पर आप जा सकते हैं। हमारी अपनी शॉप केसन शॉप अकबर प्लाजा में है, अकबर प्लाजा चुगल्ला के साथ मियां कमर्शियल मार्केट है, उसी के साथ है जनाब, जहाँ पर फाइन क्लॉथ वाले बैठे हुए हैं उनके साथ ही केसन शॉप है। तो आप वहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं। हमारा नंबर 0344-936-3366, 0344-936-3366 ये नंबर है जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल और एसएमएस करते हैं जनाब। और इस वक्त भी 4 मिनट रहते हैं, अगर आप में से कोई बंदा इस वक्त बेताब बैठा है और वो हमारे शो में आना चाहता है सो आप आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जनाब। और नंबर आपको मैंने बता दिया 0344-936-3366। पहाड़पुर में हर जगह आपको केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो जो जो टांक है जनाब हमारी, वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार हजरात जाना चाहें तो रमजान मार्केट या फिर सदाम प्लाजा जो पहले रमजान मार्केट होती थी वहां पर है, मंसूर जनरल स्टोर शॉप नंबर 4 शॉप नंबर 5 ये दोनों उनके हैं। आप उनसे केसन के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं होलसेल रेट के ऊपर। और एक ऑफर चल रही है पहाड़पुर वालों के लिए, जी जनाब स्पेशल पहाड़पुर, सॉरी पहाड़पुर वाले जुबान से निकल गया, एक हमारी ऑफर चल रही है जनाब ट्रांक वालों के लिए स्पेशली, और ये ऑफर है बिस्मिल्ला पैकेज, यानी 1000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदें आप मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा से तो आपको दो चीजें फ्री मिलेंगी। ठीक है जनाब, एक हमारा परफ्यूम जो कि गर्मी में बहुत जरूरी है, आगे ईद भी आ रही है, और दो किस्म के परफ्यूम है, एक जनाना है एक मर्दाना, आप अपनी मर्जी से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और साथ में जाफरानी साबन आपको मिलेगा, जाफरानी साबन बहुत ही कमाल का साबन है जो आपको हम फ्री दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शबरा उस्ताद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
2: वालेकुम सलाम, शुक्रिया खलील भाई।
0: किवें हाल है जी? चंगे वदे वे ठीक ठाक?
2: सुन के पे बहुत अच्छा प्रोग्राम बंदा के खास कर पे रहना, शफा दर्द हजम कंट्रोल वेट कम पेट कम ग्लूटा वाइट इस टाइम जो रहने उनका हर मौसम की जरूरत है, लेकिन ग्लूटा वाइट जो रहे जरूरी इस्तेमाल करो क्योंकि गर्मियों का मौसम है ताकि चेहरे खराब न थी, इन्हें समझे सर्दियों के मौसम गुजरने का, अगर इसको इस्तेमाल करो तो ये सेफ थी वैसे
0: चेहरा, ग्लूटा वाइट न भूलो गर्मियों के बीच
2: बिल्कुल गर्मी क्योंकि चेहरा सबको ज्यादा मुतासर थी है, तो इसको ये बाकी सारे सुनने को क्योंकि तेरा वक्त थोड़ा सारे सुनना। अस्सलाम वालेकुम,
0: बहुत शुक्रिया, जल्दी में पैगाम लेके जा रहे हैं और पैगाम बहुत ही जबरदस्त है कि भाई ग्लूटा वाइट को इस्तेमाल कीजिए। ग्लूटा वाइट का साबन भी है ग्लूटावाइट का फेस वॉश भी है केसन का, और ग्लूटावाइट का जो है जी जनाब केसन का जो है फेस वॉश भी मौजूद है। टाइम खत्म है, मैसेजेस धड़ाधड़ आ गए हैं, और हम दुरे अदन को वेलकम करते हैं। मैं इनका फैन हूँ, नजर हसन कहते हैं भाई, मैं दुरे अदन का फैन हूँ। है जी, आप उनकी ना सुने बगैर उनके फैन हो गए। हमारा तो शो सुनते हैं तो हमारे फैन है ना भाई, तो आप फैन है तो रिक्वेस्ट करें कि दुरे अदन आके हमें कोई प्यारी सी नाच सुनाए जी। है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया वान। अच्छा जी मौजूद है, और अच्छा जी आप, अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया आवान हूँ। दुरे अदन लड़की आप सिर्फ अच्छी नहीं लगती, दिल की गहराइयों से अच्छी लगती हो, सबको सलाम। यानी कि दुरे अदन कहते हैं दिल की गहराइयों से सोनिया आप ही को अच्छी लगती है भाई। अस्सलाम वालेकुम केटीए, कैसे हो? उर्दू वाली मानूर हूँ। अरूबा मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। और अरूबा अपना ख्याल रखा करो, कैसे लगी चोट? अल्लाह आपको सलामत रखे। अनीसा को सलाम। अनीसा कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई? केटीए कैसे? उर्दू वाली मानूर, केटीए आप सबको फायदा पहुंचा रहे हो, मगर अच्छा जी दूसरा ये अच्छा, कल का मैसेज इनका था। मानूर है जनाब, और मानूर कह रही है कि भाई रूबा जो है उन्हें भी अच्छी लगती है। अमीर हुसैन, दुरे अदन के मैसेज अच्छे होते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। लड़की इतने तो फैन, इतने जल्दी इतने फैन तो मेरे नहीं बने जितने तुमने बना लिए। क्या खाती हो तुम? कोई खाना हमें भी बताओ, हम भी खाएं ताकि हमारे भी ढेर सारे लोग फैन बन जाए। जनाब आप सुन रहे हैं मुझे ग्लोबल एफएम 91 डियर एसएमएल खान रेडियो पैगाम पहाड़पुर और रेडियो अमन टांग से एक साथ बराए रास्त केसन का टी टाइम। और हमारा पैगाम मोहब्बत का है जनाब, पैगाम सेहत का है, शिफा का है, खूबसूरती का है जनाब। अपने इलाके में मौजूद दुकानदारों के पास जाइए, केसन के प्रोडक्ट तलब कीजिए और उन लोगों में शामिल हो जाइए जल्दी से।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: सर पुण्य नियमा।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।